सुने अब मैं वहां स्थान बताओ जहां आप सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करें। He says,

यश रूपी निर्मल मानसरो में जिनकी जीभ हसीनी बनकर अपने गुण समुद्र के मोतिया के गुणों करती है हे राम जी. एंड वाल्मीकि कंटिन्यू टू आउटलाइन इसे ही हु टंग लाइक द स्वान.

जय। जो लोग तरह तरह से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों के लिखाकर बहु दान करते हैं, तथा जो गुरु को मन में आपसे भी अधिक भरा चाहकर सर्व भाव से सम्मित कर जाति से करते हैं, इसे प्रभु रिजाइड इन द हार्ट्स एंड माइंड दोस हु परफॉर्म पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, आई टेल यू, गिवन ऑफ पिंडा, गिवन ऑफ तर्पण, दीज आर द थिंग्स वी नो, परफॉर्मिंग हवन, श्राद्ध सेरेमोनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 181 years, and we owe all debt of gratitude to our forefathers. Bhaiya, I have heard stories that today they have paved the way for all of us, you know. In those days, they used to get up 3 o'clock and start to work in the cane field, right? But so they get up early and make about 13 roti, because family were big in those days, right? They never complain. Those who were pregnant, they had to make their children

0: जय शंकर
1: जय शंकर
2: बाबे मौसम बड़ा सुहाना है आज चल घूमने चलिए
0: जी भाई जी
1: घर के बाहर हूँ नीचे आ जा
0: ओके ओके ओके

थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर गाना आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कैसा आपको लगा, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान अगले गाने में जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू।

संतोषी मां की महिमा अपार है हर भक्त ने उनकी महिमा का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है इस चित्र की कथा भी कुछ धार्मिक पुस्तकों और लोक कथाओं के आधार पर है आशा है आप इसे सच्ची भावना से स्वीकार करेंगे जय संतोषी मां

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Hey my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour, every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti, 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful

0: Radio Jagriti. 102.7 FM.
1: धड़क दिल धड़क धड़क गया अटक अटक ना माना लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजान

0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।

कन्या है, राज रानी है, नारी जाति को महिमा मंडित करने वाली ये महानारी वनवास को गरिमा प्रदान कर वहाँ अपने दिन कैसे बिता रही है।

UUB एक थैली एंड IIB एक थैला, साथ हमारे चलना, पीछे पीछे आना, रुक मत जाना, दिल हॉन्ट यू।

0: जाए कुछ कुछ उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

0: काका बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।